0: सारी सारी रात जागू रेडियो पे गाने सुनो, छत पे लेट के गिन चुका हूँ जो रोज वो सितारे गिनो, क्यों न जाने दोस्तों की दोस्ती में दिल ना लगे, सबसे
1: वास्ता तोड़ताड़
0: के
1: गेट आउट
0: चाहता।